0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हमारे गांव या शहर में कोई बड़ा मेला लगता है तो दूर दूर से व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजाने वहां आते हैं। कोई कपड़ा बेचता है, कोई मिट्टी के बर्तन, तो कोई अनाज। कुछ दिनों तक वह मेला खूब गुलजार रहता है। चारों तरफ चहल पहल और रौनक होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यही इन व्यापारियों का असली घर है। लेकिन जैसे ही मेले के दिन पूरे होते हैं, हर व्यापारी अपनी दुकान समेटता है, अपना झोला उठाता है और शाम होते होते अपनी असली घर की तरफ रवाना हो जाता है। कोई भी उस मेले के मैदान को अपना घर मानकर वही नहीं बैठ जाता। यह पूरी जिंदगी भी विधाता का लगाया हुआ एक ऐसा ही मेला है, एक ऐसा ही बाजार है। अफसोस कि हम यहाँ आकर इतने खो गए कि इसी बाजार को अपना स्थायी ठिकाना समझ बैठे। कबीर साहब आज हमें इस जीवन रूपी हाट का असली मकसद याद दिला रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सत्य का दार्शनिक सूत्र। इत पर घर उत पर बन जन आए हाट, इत पर घर उत पर बन जन आए हाट, करम किराणा बेची करी उठी लागी जू बाट।

नमस्कार श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, इत पर घर उत पर। इत यानी जहाँ से तुम आए हो, जन्म से पहले का लोक, वह भी पराया था, और उत यानी जहाँ तुम मौत के बाद जाओगे, वह भी एक अजनबी जगह है। यह जो बीच का संसार है, यहाँ तुम केवल बन जन आए हाट, यानी एक बाजार में बन जन यानी व्यापार करने के लिए थोड़े समय के लिए आए हो। यह संसार तुम्हारा स्थाई घर नहीं है। तो इस बाजार में हमें करना क्या था? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, कर्म किराना बेची करी। यहाँ हमारा सौदा क्या है? हमारे कर्म ही हमारा किराना है, यानी व्यापार का सामान है। हम जहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के संसार भुगतने, उनका हिसाब किताब चुकता करने और नए शुभ कर्मों की पूंजी कमाने आए हैं। उठी जो लागे बाट, और जैसे ही इस कर्मों के लेन देन का समय पूरा होता है, काल की घंटी बजती है और जीव अपनी दुकान समेटकर बाट यानी अपने आगे के रास्ते पर उठकर चल देता है। फिर वह एक पल के लिए भी यहाँ रुक नहीं सकता। यह दोहा कर्म सिद्धांत और जीवन की क्षणभंगुरता का एक बेजोड़ दार्शनिक दस्तावेज है। वेदांत में इस संसार को संसार चक्र और एक सराय की तरह माना गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह इस बाजार की चीजों, धन, मकान, परिवार को ही अपनी स्थायी संपत्ति मानकर उनके मोह में डूब जाता है और अपनी मूल आत्मिक यात्रा को भूल जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि तुम यहाँ केवल एक मुसाफिर और व्यापारी हो। बुद्धिमान व्यापारी वही हैं जो इस हाट में आकर अपने कर्मों के खाते को शुद्ध कर लें, विकारों के कर्ज से मुक्त हो जाएं और राम नाम के सुमिरन का एक ऐसा अविनाशी धन कमा लें जो इस बाजार के बंद होने के बाद भी उसके साथ जा सकें। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी इस दुकान को देखिए। हम सुबह से रात तक इस संसार रूपी हाट में जो भागदौड़ कर रहे हैं, क्या हम सही व्यापार कर रहे हैं? क्या हम यहाँ केवल चिंताओं, ईर्ष्या और नफरत का घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, शाम होने को है और इस हाट को बंद होना ही है। आज कोशिश कीजिए इस बाजार के सम्मोहन से ऊपर उठने की। अपनी भूमिका को एक व्यापारी की तरह समझिए। यहाँ की चीज़ों का उपयोग कीजिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए, लेकिन इनके मोह में खुद को मत बांधिए। अपने भीतरी कर्मों के किराने को साफ कीजिए। नेक नामी कमाई और उस राम नाम की पूंजी को सहजिए, जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए अमीर बना देती है। जब बुलावा आए तो हम हल्के होकर अपनी असली राह पर चढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

चखावे। भगता, तूने सहस्त्रों हजारों चमकते सितारों को अपनी ऊर्जा चेतना से प्रस्फुटित किया, परख लिया सृष्टि का अंतरंग, अणु रेणु के सह तुझे हुआ बोध, खोज लिया विश्व ज्ञान, उस चिरंतन सत्य को अपनों में समेटकर तू हुआ बुद्ध, सम्यक बुद्ध। मैंने तेरी इस बुद्ध चेतना को यथार्थता के धरातल पर ज्ञान साधना से स्पर्श कर लिया, तब देखा तेरे तत्व ज्ञान में समाहित मानवीयता का मर्म, संपूर्ण संसार एवं विश्व कल्याण का कर्म, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से युक्त विशुद्ध मंगलकारी धर्म, नीतिमान धम्म। तू ऐसा तत्वशील विचारों का सृष्टि के कण कण में व्याप्त विज्ञान अध्यात्म का ज्ञाता, वास्तव और कल्पना का पारखी, इहवाद और भौतिकवाद का परख करता, संपूर्ण विश्व का मर्म ज्ञाता, मूल केंद्रीय संकल्पनाओं का भाष्यकार, विश्व चिकित्सक तू, तू सम्यक संबोधी विश्व दृष्टा, विश्व उत्क्रांति का सार तत्व, संपूर्ण सत्य के साथ जाज्वल्यमान ज्ञान प्रकाश की मशाल लिए खड़ा तू, दुख को सम्यक विचारों की पकड़ में जकड़ कर तूने विश्व की वेदना, सेदन, रोदन और पीड़ा समझाने के लिए चार आर्य सत्य को स्थापित किया। दुख है दुखों का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। कुछ विद्वानों ने आलोचना की, तुझे निराशावादी कहा, पर तू तो विज्ञानवादी, सत्य मंथन से जीवन में सकारात्मकता का आशावादी सूत्र तूने पिरोहित किया और दुख मुक्ति का मार्ग प्रकाशमान हुआ। बा तथागता, तूने स्वयं को बुद्ध घोषित किया, दूसरों ने तो तुझे ईश्वर बनाने की ठान ली थी, संपूर्ण विश्व के लोकमंगल का मार्ग तेरे मानवतावादी संस्कार केंद्रों ने प्रशस्त किया। मनुष्य मनुष्य में ऊंच नीचता का भेदभाव तेरी प्रज्ञा और प्रखरता के सामने टिक नहीं पाया और मनुष्य के अस्तित्व का बंध समता की सुई से तूने सी दिया। यह मेरा वह तेरा, जात पंथ वर्ण धर्म, स्त्री पुरुष प्रदेश और बहुत कुछ, विविध प्रकार के भेद के स्तर तेरे तत्व ज्ञान से निरर्थक सिद्ध होते गए। तथापि वर्तमान आचरण में ये भेद का अस्तित्व प्रवाहमान दिखाई देता हो, तब उनके मानव होने पर तुमने मार्मिक चिरंतन प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए हैं। ईश्वर परमात्मा और कल्पना कर्मकांड, यज्ञ होम हवन, पशु हत्या, बलि, अंधश्रद्धा, इन्हें तुमने निरर्थक कर दिया, उनके अर्थ

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टचिंग।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हमारे गांव या शहर में कोई बड़ा मेला लगता है तो दूर दूर से व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजाने वहां आते हैं। कोई कपड़ा बेचता है, कोई मिट्टी के बर्तन, तो कोई अनाज। कुछ दिनों तक वह मेला खूब गुलजार रहता है। चारों तरफ चहल पहल और रौनक होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यही इन व्यापारियों का असली घर है। लेकिन जैसे ही मेले के दिन पूरे होते हैं, हर व्यापारी अपनी दुकान समेटता है, अपना झोला उठाता है और शाम होते होते अपनी असली घर की तरफ रवाना हो जाता है। कोई भी उस मेले के मैदान को अपना घर मानकर वही नहीं बैठ जाता। यह पूरी जिंदगी भी विधाता का लगाया हुआ एक ऐसा ही मेला है, एक ऐसा ही बाजार है। अफसोस कि हम यहाँ आकर इतने खो गए कि इसी बाजार को अपना स्थायी ठिकाना समझ बैठे। कबीर साहब आज हमें इस जीवन रूपी हाट का असली मकसद याद दिला रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सत्य का दार्शनिक सूत्र। इत पर घर उत पर बन जन आए हाट, इत पर घर उत पर बन जन आए हाट, करम किराणा बेची करी उठी लागी जू बाट। इत पर घर उत पर बन जन आए हाट,

श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, इत पर घर उत पर। इत यानी जहाँ से तुम आए हो, जन्म से पहले का लोक, वह भी पराया था, और उत यानी जहाँ तुम मौत के बाद जाओगे, वह भी एक अजनबी जगह है। यह जो बीच का संसार है, यहाँ तुम केवल बण जण आए हाट, यानी एक बाजार में बण जण यानी व्यापार करने के लिए थोड़े समय के लिए आए हो। यह संसार तुम्हारा स्थाई घर नहीं है। तो इस बाजार में हमें करना क्या था? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, कर्म किराना बेची करी। यहाँ हमारा सौदा क्या है? हमारे कर्म ही हमारा किराना है, यानी व्यापार का सामान है। हम जहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के संसार भुगतने, उनका हिसाब किताब चुकता करने और नए शुभ कर्मों की पूंजी कमाने आए हैं। उठी जो लागे बाट, और जैसे ही इस कर्मों के लेन देन का समय पूरा होता है, काल की घंटी बजती है और जीव अपनी दुकान समेटकर बाट यानी अपने आगे के रास्ते पर उठकर चल देता है। फिर वह एक पल के लिए भी यहाँ रुक नहीं सकता। यह दोहा कर्म सिद्धांत और जीवन की क्षणभंगुरता का एक बेजोड़ दार्शनिक दस्तावेज है। वेदांत में इस संसार को संसार चक्र और एक सराय की तरह माना गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह इस बाजार की चीजों, धन, मकान, परिवार को ही अपनी स्थायी संपत्ति मानकर उनके मोह में डूब जाता है और अपनी मूल आत्मिक यात्रा को भूल जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि तुम यहाँ केवल एक मुसाफिर और व्यापारी हो। बुद्धिमान व्यापारी वही हैं जो इस हाट में आकर अपने कर्मों के खाते को शुद्ध कर लें, विकारों के कर्ज से मुक्त हो जाएं और राम नाम के सुमिरन का एक ऐसा अविनाशी धन कमा लें जो इस बाजार के बंद होने के बाद भी उसके साथ जा सकें। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी इस दुकान को देखिए। हम सुबह से रात तक इस संसार रूपी हाट में जो भागदौड़ कर रहे हैं, क्या हम सही व्यापार कर रहे हैं? क्या हम यहाँ केवल चिंताओं, ईर्ष्या और नफरत का घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, शाम होने को है और इस हाट को बंद होना ही है। आज कोशिश कीजिए इस बाजार के सम्मोहन से ऊपर उठने की। अपनी भूमिका को एक व्यापारी की तरह समझिए। यहाँ की चीज़ों का उपयोग कीजिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए, लेकिन इनके मोह में खुद को मत बांधिए। अपने भीतरी कर्मों के किराने को साफ कीजिए। नेक नामी कमाई और उस राम नाम की पूंजी को सहेजिए जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए अमीर बना देती है। जब बुलावा आए तो हम हल्के होकर अपनी असली राह पर चढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

भगता, तूने सहस्त्रों हजारों चमकते सितारों को अपनी ऊर्जा चेतना से प्रस्फुटित किया, परख लिया सृष्टि का अंतरंग, अणु रेणु के सह तुझे हुआ बोध, खोज लिया विश्व ज्ञान, उस चिरंतन सत्य को अपनों में समेटकर तू हुआ बुद्ध, सम्यक बुद्ध। मैंने तेरी इस बुद्ध चेतना को यथार्थता के धरातल पर ज्ञान साधना से स्पर्श कर लिया, तब देखा तेरे तत्वज्ञान में समाहित मानवीयता का मर्म, संपूर्ण संसार एवं विश्व कल्याण का कर्म, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से युक्त विशुद्ध मंगलकारी धर्म, नीतिमान धम्म। तू ऐसा तत्वशील विचारों का सृष्टि के कण कण में व्याप्त, विज्ञान अध्यात्म का ज्ञाता, वास्तव और कल्पना का पारखी, इहवाद और भौतिकवाद का परख करता, संपूर्ण विश्व का मर्म ज्ञाता, मूल केंद्रीय संकल्पनाओं का भाष्यकार, विश्व चिकित्सक तू, तू सम्यक संबोधी विश्व दृष्टा, विश्व उत्क्रांति का सार तत्व, संपूर्ण सत्य के साथ जाज्वल्यमान ज्ञान प्रकाश की मशाल लिए खड़ा तू, दुख को सम्यक विचारों की पकड़ में जकड़ कर तूने विश्व की वेदना, सेदन, रोदन और पीड़ा समझाने के लिए चार आर्य सत्य को स्थापित किया। दुख है दुखों का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। कुछ विद्वानों ने आलोचना की, तुझे निराशावादी कहा, पर तू तो विज्ञानवादी सत्य मंथन से जीवन में सकारात्मकता का आशावादी सूत्र तूने पिरोहित किया और दुख मुक्ति का मार्ग प्रकाशमान हुआ। बा तथागता, तूने स्वयं को बुद्ध घोषित किया, दूसरों ने तो तुझे ईश्वर बनाने की ठान ली थी, संपूर्ण विश्व के लोक मंगल का मार्ग तेरे मानवतावादी संस्कार केंद्रों ने प्रशस्त किया। मनुष्य मनुष्य में ऊंच नीचता का भेदभाव तेरी प्रज्ञा और प्रखरता के सामने टिक नहीं पाया और मनुष्य के अस्तित्व का बंध समता की सुई से तूने सी दिया। यह मेरा वह तेरा, जात पंथ वर्ण धर्म, स्त्री पुरुष प्रदेश और बहुत कुछ, विविध प्रकार के भेद के स्तर तेरे तत्व ज्ञान से निरर्थक सिद्ध होते गए। तथापि वर्तमान आचरण में ये भेद का अस्तित्व प्रवाहमान दिखाई देता हो, तब उनके मानव होने पर तुमने मार्मिक चिरंतन प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए हैं। ईश्वर परमात्मा और कल्पना कर्मकांड, यज्ञ होम हवन, पशु हत्या, बलि, अंधश्रद्धा, इन्हें तुमने निरर्थक कर दिया, उनके अर्थ